0: Delivery or collection from Gow Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gow, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gow Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट यूके ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
2: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
3: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.

0: अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर लें, और अगर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद है तो इसे भी ऑन कर दें और तसल्ली कर लें कि आपका घर चोरों से महफूज है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: From the heart of Bedfordshire in Luton, this is Inspire FM.
2: I have whiz-

0: When life gets busy
1: and when family life gets complicated,
0: there's always a reason to talk. जब जिंदगी आपको शहद देती है और यही जिंदगी आपको खट्टे खट्टे लीमू देती है तो आप हमें ज्वाइन करते हैं
1: Every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters.
0: A show bringing real conversation, practical advice.
1: मैं हाजरा खान और मेरे साथ हैं अफशान इरफान. ज्वाइन करें हमें हर बुध सुबह 10 से 11 बजे Inspire FM 105.1 पर. I have

0: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.

0: استنبول زباں اب تک تیری لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں چومس کا نام ہے بول کلب آزاد تیرے جناب والا آپ تمام لوگ سن رہے ہیں ریڈیو آزاد وے یور وائس میرز آپ کا پیارا راز دلارا بانکا سجیلا ریڈیو آزاد آج 14ویں سالگرہ ہے ریڈیو آزاد کی اور بہت سارے مزیدار صبح سے لے کے اب تک ہم کئی ہمارے کام تھے جو ہم نہیں کر پائے کیونکہ آج ایک اسپیشل سیلیبریشن چل رہی ہے ریڈیو آزاد کے سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے براڈ کاسٹ پہ بھی اور جتنے لوگوں کو ہم نے آسانیاں فار دیئر ایئرز اینڈ آسانیاں فار دیئر آئیز پیدا کی ہیں ان کے رسپانس آل اوور دا ورلڈ نیپال سے لے کے کینیڈا یو ایس اور ہر انگلینڈ ہر جگہ سے مبارکبادیں ہم وصول کر رہے ہیں صبح سے اور جب یہ ایسی کوئی چیز ہو تو پھر باقی ساری چیزیں پینڈنگ میں چلی جاتی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ دن آپ لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی خوبصورت موسم بڑا اچھا ہے اندر کا موسم بھی اچھا ہے 14 سال کی محنت کے رنگ لانے کا بھی اور بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے سکھانے کا بھی ایک پلیٹ فارم ریڈیو آزاد جس پیار محبتوں دعاؤں جتنی عزتیں پیار محبتیں اور دعائیں ہمیں ملی ہیں اس کے اگر ہم ڈالرز بنا دیں تو میرا خیال ہے ہم بلینئر ہو جاتے ہیں لیکن سوشل بزنس ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ سارے کام ہو گئے ہیں تو چلیے آج کا یہ شو شروع کرتے ہیں جی 972-501-9390 واٹس ایپ نمبر میں تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے تو جو لوگ بھی واٹس ایپ پہ کال کر کے بات کرنا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ مہربانی کر کے جن کے پاس میرا سیل فون نمبر ہے اس کے واٹس ایپ کے اوپر آپ لوگ کالز کر سکتے ہیں تو میں وہاں سے بھی آپ کو آن ایئر لے سکتا ہوں آسانی پیدا کرنے کے لیے اور ہماری فون لائنز تھوڑا سا آج کل بیہیو نہیں کر رہی اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں دو لائنز بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو لیتے رہیں گے اور ساتھ ہی جو ہمارے واٹس ایپ کا نمبر ہے جن کے پاس بھی ہے وہ لوگ بھی ساتھ ساتھ آتے رہیں گے آج کا پہلا لکی کالر دیکھتے ہیں جی کون ہے سرپرائز ہے ریڈیو آزاد یور آن دی ایئر جی بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ٹھاک
1: بس کنگریچولیشن 14 سال
0: تھینک یو سو گریٹفل تھینک یو ویری مچ اسی بہانے آپ کی آواز آن ایئر آ گئی لکی اور ساتھ سگنیچر ہنسی بھی آ گئی
1: پلانیٹری الائنمنٹ سب ٹھیک ہے آج ایسا لگ رہا ہے
0: یہ میرا خیال ہے پلانیٹری الائنمنٹ کا ایک واٹس ایپ براڈ کاسٹ ہوتا ہے یہ آج کل ہم نے نیا کام شروع کیا ہے میں لوگوں کی گڈ ول پہ رہنے کے بجائے میرا خیال ہے ان کو نا خبردار کرتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ اس طرح مجھے بھی آسانی ہوتی ہے سسٹم بنا کے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے بٹ سو
1: جو بھی ہو پلانٹ الائن ہو جائے ویدر اٹس تھرو خبرداری یا سمتھنگ ایلس اٹ ورکس
0: یہی تو چل رہا ہے پچھلے 14 سال سے ہوشیاری خبرداری
1: بس اسی لیے تو 14 سال تک پہنچ گئے آپ
0: ہاں جی اور پتا بھی نہیں چلا اور اگر آپ کوئی چیز ایسی چلا رہے ہوتے ہیں بنا کر لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو لگ پتا جاتا ہے اور جب ویسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ پتا بھی نہیں چلا اور 14 سال گزر گئے
1: That's a very good observation actually because سچ مچ پتا نہیں چلا اور مجھے ہی لگتا ہے کہ میں وہ 14 سال کی جرنی میں میں 13 سال تو ہوں آپ کے ساتھ تو وہ بھی کیسے گزر گئے یہ نہیں پتا چلا
0: مجھے آج بھی وہ آپ کی پہلی والی میٹنگ اور ایکچولی آج کل اسٹوڈیو کا ڈیسک جہاں پہ ہے اور جہاں سے یہ سب آپریٹ ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں کانفرنس روم ہوا کرتا تھا اٹس دی سیم ایگزیکٹ سیم ویری پلیس ویئر وی آر سٹنگ ویئر یو کیم ان فار دی فرسٹ ٹائم اور اسی دن
1: اور آپ نے لیفٹ رائٹ کر دی تھی میری آئی ریمبر ویری ویل
0: نہیں اس سے پہلے آپ اتنا کچھ دنیا میں کر رہی تھی تو میں تھوڑا سا سسٹم کو ہلاتا ہوں بندے کی تاکہ جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل سکے سائلی جی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا راگو کا آپ لوگوں نے بہت خوبصورت ریڈیو آزاد میں رنگ ایڈ کیے اپنی پریزنس سے اپنی پروگرامنگ سے جھوم برابر جھوم میں آپ نے برابر جھمائے رکھا ہمارے تمام لوگوں کو بیچ میں آپ نے ماشاء اللہ ڈگریز بھی کیں اب آپ اور زیادہ پروفیشنل کنسلٹنٹ بھی ہو گئیں لوگوں کے دماغ کی جو کھڑکیاں کھولنے اور روشن دانوں میں سے ہوا گزارنے کے لیے تو اس سارے اور بیچ میں آپ کی زندگی میں بہت ساری چینجز آئیں جو میں نے ہوتے ہوئے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے میں نے بڑے ہوتے دیکھے ماشاء اللہ آج کل جب میں ان کو کبھی کبھی فیس بک پہ دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے یہ ہماری وہی قوم ہے جو بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن بڑے ابھی تک بڑے نہیں ہو سکے
1: جی بالکل ٹھیک بات ہے
0: تو اس جرنی میں یو ہیو گیون سو مچ ٹو اس اینڈ وی ہیو انجوائڈ یور کمپنی آپ کی ہنسی آپ کی باتیں اور آپ کی پریزنس اور راگو جہاں جہاں بھی اس نے سپورٹ کیا ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے سو ویری گریٹفل فار آل دی ٹائم دیٹ یو ہیو اسپینڈ ود اس
1: ویل آئی اپریشیٹ دیٹ یو گائز ہیو دس پلیٹ فارم فار اس اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ اتنی یو نو جب ہم کہتے ہیں کوئی پلانٹ बढ़ता है, बट यू नीड दैट फर्टाइल सॉइल फॉर दैट प्लांट टू सक्सीड एंड रियली प्रोवाइड शेड फॉर अदर्स. सो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने वो फर्टाइल सॉइल तैयार की है, एंड इट्स ऑलवेज बीन अ वंडरफुल जर्नी सो फार, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 14.
0: So grateful. 28 साल जब पूरे होंगे जनाब, तो ये एक्चुअली जो मट्टी और ये सारा जो बेड बनाया गया सारा कुछ, क्योंकि हमने तो शुरू में चीज़ की एक दाग बेल रखी, फाउंड होगी एक चीज़ और उसके बाद यू नो एक्सीडेंटली हुआ और उसके बाद काम चल पड़ा, लेकिन उसके बाद इस मट्टी को मैं सिर्फ उसकी कभी कभी आके गोडी करता हूँ, ऊपर नीचे कर देता हूँ मट्टी को, बाकी सारे का सारा जो एक्चुअल जो क्रेडिट जाता है वो आयशा जी का है. और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी टीम आती रही, वो रंग बिखेरती रही और इन सबको साथ चलाने का, और इस बहुत बड़ा सेहरा जो है वो कुछ 3-4 लोग हैं जिनको मैं आज क्रेडिट भी देना चाहूँगा, उनकी वजह से है. जो हम बन पाए वो भी उनकी वजह से है, जो नहीं बन पाए वो भी उन्हीं की वजह से है. तो इसीलिए ये क्रेडिट उनको ही साथ साथ देना चाहिए, मैं भी इसमें आता जाता हूँ ताकि ये चीज़ों को मैं देखता रहूँ और हम किसी विजन के ऊपर चलते रहें. सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच. मेहरबा हमारे साथ रेडियो आज़ाद यू ऑन द एयर.
2: जी अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम.
2: हमने कहा टीन एज में शामिल हो गए, एंटर हो गए रेडियो आजाद वाले.
0: अब 14 से लेके 19 साल तक जो हमारा जो बंदे बच्चे का भी जो बिल्कुल सब बदल जाता है, तो इंशाल्लाह मेरा भी हमारा भी यही प्लान है कि 14 साल के बाद बच्चा बड़ा हो गया तो अब ये बड़ों की तरह सोचेगा, बड़ों की तरह करेगा. इसके सिस्टम जो है इंशाल्लाह जो हमने सीख लिया है समझ लिया है, अब इसके टेक ऑन करने का, दुनिया को टेक ऑन करने का टाइम आ गया.
2: बिल्कुल बिल्कुल. अब मैं कह रही हूँ कि आप शेक इसलिए करते हैं कि सितारे अलाइन हो जाए.
0: हाँ जी, वो मुझे हिलाना हिलूना पड़ता है ताकि थरथली मचानी होती है ना, वो यार नहीं आनियाँ जानियाँ होती हैं महफिल में, तो पता चलता है कि महफिल जिंदा है.
2: बिल्कुल. मैंने कहा आप 14 साल की, अभी सायली जी बात कर रही थी, हमने कहा जिंदगी गुजर गई, पता ही नहीं चला.
0: ये बिल्कुल ऐसे जो मैंने कहा था ना, खान जी एक दफा मुझसे बात करते करते, वो शेव कर रहे थे तो बात करते करते हम चुप से हो गए शेव करते करते, और मैंने ऐसे पूछ लिया चेहरे का जब रंग बदला था, के गले हाँ जी यानी क्या बात, तो कहते हैं यार मुझे पता ही नहीं चला, आज मैंने शीशे में शेव करते हुए देखा, हालांकि कितनी दमदार शेव करता है, आज मुझे लगा कि मेरे चेहरे के ऊपर इतने सन गुजर गए, इतने साल गुजर गए कि, और बीच में मुझे एहसास भी नहीं हुआ, और आज मतलब 70-75 ये जब आज मुझे लगा है कि मैं बूढ़ा हुआ.
2: जहन जो है वो मानता नहीं है, देख के अब पता चलता है कि यस वक्त की मुसाफत हमने बहुत तय कर ली.
0: असल में रूह की कोई एज नहीं है, और रूह जिस टाइम एंड स्पेस से आया है उसको, उसके ऊपर कोई वक्त नहीं गुजरता है, वक्त जिस्म पे गुजर जाता है, वक्त जहन पे गुजर जाता है, और वो उसने इतना ऑक्यूपाई करके हमको रखा होता है, इसीलिए तो 18-20 साल के बंदों की तरह 60-70-80 साल के लोग बिहेव कर रहे होते हैं, और जो 17-18 साल में सजाएं मिल रही होती हैं वो हमें इस उम्र में भी मिल रही होती हैं, क्योंकि हम वो मेच्योरिटी उस तरह नहीं जिंदगी के साथ कर पाए. और यहाँ मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बोर हो जाएं, बोर बातें करें, बोर कलर्स पहने, लोगों को आप टेंशन दें, परेशान करें, इसमें यह है कि जिंदगी के जो एड अप हुए ईयर्स एक्सपीरियंस के तौर पे आए हैं उनको आपने डील ऐसे किया है कि आपका हंसना खेलना मजाक करना फन जो है, फन के टाइम पे फन करना और सीरियस वक्त के काम पे सीरियस करना, जो 3-4 पिलर्स हैं जिंदगी के उनको अपने काबू में रखना कि बाकी चीज़ों में आप इन्जॉय कर सकें, लाइट हार्टेड रह सकें, फन क्रिएट कर सकें. जितने लोगों की जिंदगी में फन नहीं है इस वक्त, चाहे वो 50, 40, 60, 70 जितने के भी हैं, ये हमारा कसूर है, हमने चीज़ों को मैनेज नहीं किया. 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैनेज नहीं किया गया, हेल्थ को, रिलेशनशिप्स को, फाइनेंसिस को, या चौथी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी वो हमने बनाई नहीं, मकसद. उस मकसद के पीछे जब हम चलते हैं तो उसकी जो राह पे जब हम लगते हैं तो फिर आपको इस तरह अजीब किस्म की कमज़ोरी नहीं फील होती, मैं कहाँ हूँ, वर्थलेसनेस नहीं फील होती. जो आपको मिला होता है उसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं होती किसी को आपको कि आपको क्या मिला. फिर आदमी ये देखता है कि उसमें शुक्रगुजारी में मैंने क्या क्या किया, मैं इस सफ़र में कहाँ तक, मैंने कहाँ पहुँचा, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या समझा, मेरे अंदर क्या प्रोडक्टिविटी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें आईं, और मैंने कैसे अपने डीमंस को कैसे डील किया, अपने कॉम्प्लेक्सेस को, इनसिक्योरिटी को, अपने मसाइल को डील कैसे किया, और अपने गिफ्ट के साथ मैं कहाँ तक पहुँचा. ये वो दिन होते हैं जिसमें आदमी इन तमाम चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और अच्छा फील करता है, यूफोरिक रहता है.
2: आपकी बात पे दो चीज़ें और ऐड करूँगी.
0: जी जी.
2: एक तो कि लर्निंग और थिंकिंग वहाँ होती है जहाँ आपने कहा ना मिट्टी नरम हो, गोडी की हुई हो, ताकि जरखेजी बढ़े और हवा और दूसरे जो भी है जमीन के मॉलिक्यूल्स और भी इसको ताकत मिले, यानी दूसरे जितने भी हम आसपास से जो जमीन कैच करती है एलिमेंट्स को, तो गोडी करना बहुत जरूरी है जहन की भी और जमीन की भी, वरना फूल नहीं उगेगा। तो सोच का फूल उस पर खिलता है। दूसरा एक और भी चीज है कि लर्निंग वहां पे सबसे बेहतरीन होती है जहाँ लोग अच्छे होते हैं, जहाँ एनवायरमेंट अच्छा होता है, जहाँ पे आपको वैल्यू दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है और आपकी बात सुनी जाती है। तो वहां पे लोग कंफर्टेबली आके लर्न करना और अपनी राय, अपनी थिंकिंग पेश करते हैं। दूसरा मैंने जो फर्क देखा, पता नहीं 10 साल या 11 साल मुझे हो गए, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि कौन से साल ज्वाइन किया था। तो मैंने एक चीज मिस करती हूँ कि रेडियो जो है वो टीवी बन गया, जो क्योंकि मेरे जहन में एक, जब आप सिर्फ आवाज का जादू सुनते हैं तो आपके कान जो हैं वो हमतन गोश होके और उसको पूरी तरह अब्सॉर्ब करते हैं। अब हमें दो प्लेटफॉर्म है कि हमें वीडियो भी देखनी है, ऑडियो भी, उसमें हमारी अटेंशन बढ़ जाती है। तो पहले मजा मैं क्योंकि ज्यादातर ऑडियो पर्सन हूँ, तो इसलिए मुझे वो चीज की कमी अब भी महसूस होती है जहाँ पे, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म बदल गए, यू पीपल हैव टू डू दैट, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन जो एक रेडियो की अपनी खासियत है उसमें कमी आ गई।
0: आप अगर मुझसे पूछेंगी ना, और मेरी प्रेफरेंस अभी भी ऑडियो है। ये जो ऑडिटरी सेंसेस इंसान को रब ने दिए ना, इसको जो इमेजिन करने की इसके साथ जो पावर्स हैं, जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो आप खुद इमेजिन करते हैं, उससे आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उससे आपकी इंट्रीग में इजाफा होता है, उससे आपकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है, उससे आप डायरेक्टर की तरह खुद चीज़ें क्रिएट करते हैं, उससे आप एक्टर की तरह खुद अपने ऊपर वो चीज़ें होते हुए महसूस करते हैं। लेकिन जब आप वीडियो देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने करनी थी अब वो वीडियो आपके लिए कर देता है, और इतना सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी क्योंकि वक्त के साथ साथ भी बदलना है, रेडियो में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, उसको प्रोग्रामिंग हमने वैसी रखनी है, सिर्फ कैमरास वगैरह के साथ हम कोशिश करते हैं, और कोई भी आपको पूरा जो शो है ना वो वीडियो पे भी हम नहीं देते, ताकि 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के जो क्लिप्स हैं, जैसे आयशा जी के शोज़ के होते हैं, फेसबुक लाइव होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि विजुअल मीडियम को भी आप केटफ और यू नो आप कर सकें, नए ज़माने के साथ भी चल सकें, और जिन लोगों को ये 2 मिनट 3 मिनट के अंदर कुछ लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि वक्त लोगों के पास कम है, अटेंशन स्पैन वो पुराने ज़माने के रेडियो वाला है नहीं, तो वो हम पहले वो देते हैं, उसके बाद अगर किसी को ये चाहिए तो वो रेडियो ढूंढ लेता है, वो 2 घंटे का शो ढूंढ लेता है, वो मिक्स क्लाउड पे जाके अपने शोज़ ढूंढ लेता है। तो हर उस बंदे के लिए डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स है, ये बंदोबस्त करना भी हमारा काम है, तो वो भी साथ साथ हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग कम्फर्टेबल हो रहे हैं स्क्रीन के साथ, आहिस्ता आहिस्ता ना टाइम लगता है इन तमाम चीज़ों, जितना आप करेंगे उतना ये बेहतर होता चला जाएगा, और इसमें लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, स्पेशली वो जो क्लिप्स हैं। रेडियो आज़ाद पिछले 3 सालों में अगर अपनी जगह पकड़ पाया है, AM/FM ना होने की वजह से भी, डिजिटली भी, और लोगों तक जो पहुंच पाया है, उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो ये जो हम आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल की तरफ जा रहे हैं उसका भी बड़ा रोल। रेडियो आज़ाद यू रहोंगे। वालेकुम अस्सलाम, मुबारकबाद, बड़ी बात है, आज तो बड़ा दिन होगा जो आप तशरीफ लाएंगे जहरा जी।
3: आपकी इतनी बड़ी सेलिब्रेशन और हम ना करें कॉल, आपको पता है मैं जॉब पर हूँ और मैं क्लोजेट में घुसकर आपको कॉल कर रही।
0: देखिए जिसने करनी होती है ना, वो चाहे क्लोजेट में घुसे, चाहे बाथरूम में घुसे, चाहे गाड़ी में घुसे जाके, जैसे नमाज के लिए हम गाड़ी में घुस के वक्त निकाल लेते हैं, ऐसे लोग जिसने निकालना होता है वो निकाल लेता है वक्त। थैंक यू वेरी मच।
3: वेलकम, क्योंकि मेरी जो इनकी काफी शोर होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो मुझे याद नहीं, तो मुझे वही कॉन्सेंट्रेट होकर बात करिए। बहुत बहुत मुबारक हो आजाद जी आपको, बहुत रियली मुझे इतनी खुशी हो रही थी ये सुनकर कि 14 ईयर्स हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, और आपने एक नन्हे से पौधे को एक फूल वाला जबरदस्त फल वाला दरख्त बना दिया है। मुझे पता है क्रेडिट सारे लोगों को जाता है, आपकी इंटायर टीम को जाता है, मगर मसला ये है कि हमारा आपके साथ इतना इंटरेक्शन हुआ है, और इतना मैं ये समझती हूँ कि मुझे मेरा सारा जितना भी मुझे मेरी ग्रोइंग में, मेरी मेंटल कंडीशनिंग में आपका जितना बड़ा रोल है ना आजाद जी, अब यकीन करें मैं बता नहीं सकती। मैं अभी भी जब भी मुझे कुछ होता है, मैं सिर्फ आपकी जो नई ऑडियो सुनती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, मुझे नई जिंदगी मिल जाती है।
0: So grateful,
3: आप यकीन करें आजाद जी, मैं आपको ऑनेस्टली, मैं आई एम नॉट, मतलब मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मुझे मेरी बेटी मुझे कहती है समटाइम, पूछती है कि मामा आप इस तरह की मेंटेलिटी कैसे, आपकी आप बहुत डिफरेंट है दूसरों से। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ना आजाद जी के शो का है सारा क्रेडिट, ऑनेस्टली आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट लाइंग, मैं बिल्कुल ये हमेशा इसे कोट करती हूँ, आपका बहुत बड़ा हाथ है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आजाद जी, मेरा जो विजन क्लियर अल्लाह के बारे में हुआ है ना, यकीन करें जब मैंने आपके शो सुने थे और हम जो अल्लाह को क्या बना दिया था, हम लोग हर वक्त अल्लाह ये करेगा अल्लाह, लेकिन आपने इतना खूबसूरत अल्लाह हमें पेश किया जिससे प्यार आने लगा और मुझे आप यकीन करें लिखेंगे कहते ये है खुदा। और ये मैंने अपनी बेटी को बताया ना, क्योंकि यहाँ के बच्चे अगर आप उन्हें ये डरा डरा के कहते रहे जो होगा तो अल्लाह ये कर देगा अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को ये सब बताया कि तो प्यार करने वाली चीज है, इससे डरना नहीं होता ये वो। तो अब यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आप मेरे हमेशा आपको और सबसे बड़ी है रेडियो आजाद जी मेरे लिए एक बहुत बड़ी जो है ना गिफ्ट है मेरी जिंदगी में, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने आप लोगों को फाइंड किया और मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया था, एंड आई एम सो ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर यू नो रेडियो आजाद के
0: लाइकवाइज। आपकी जो प्योर इंटेंशंस हैं, आपकी जो दुआएं हैं, आपकी जो सिंसेरिटी हैं, और एक लंबे अरसे तक जो रेडियो आजाद का और बोल के लब आजाद तेरे का जो आपने साथ दिया है शो को स्टार्ट करने का, वो उन तमाम चीज़ें जो भी आपको मिला है ना, आपने पूरा पूरा उसका हक अदा किया है और आपने रिटर्न भी किया है। एक्चुअली अगर हमें जो कुछ मिल रहा होता है ना, जिस दिन हमारा क्रेडिट और डेबिट सीधा होना शुरू हो गया और हम लोग अगर कुछ दे नहीं सकते, तो कम से कम जहनी तौर पे, रूहानी तौर पे अगर हम अपनी हाज़िरी लगाते हैं, अपने अल्फाज से हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा समझते हैं, और फिर साथ साथ अपने तरीके से हम कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें वो दो अच्छा हो जाती हैं, उनके रिजल्ट आपकी ज़ात पर। चीज़ की कदर करना अगर आपने नहीं, असल में हम जिस ज़माने और जिस इलाके से और जिस मिट्टी से उठे हैं ना, हमें रब की कदर नहीं है, हमें अपने टैलेंट्स की कदर नहीं है, हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं है, हमें जो मिला हुआ है हमें उसकी कदर नहीं है, और जो नहीं मिला हुआ उसके लिए हमें सब्र नहीं है, और जो नहीं मिल रहा उसके लिए हम काम करने के लिए अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, और चीज़ों को अभी तक हमें सही सेंस में लेना ही नहीं आया। हर चीज़ हमें लगता है कि हमारे हम अंडर अटैक हैं, हमें लगता है कि हमारा सर्वाइवल स्टेज पर चला गया। हालाँकि अगर आप इससे बाहर निकलेंगे, इन डर जो हैं, इन डरों से आप बाहर निकलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने ब्लेस्ड हैं आप, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है, कितना आपको मिला हुआ है और कितना आप वापस दे सकते हैं। जब ये तमाम चीज़ें समझ आएंगी ना, जब आपका पूरा फेवर बैंक के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है, जो मिल रहा है वो आपने देना है, अपनी ज़ात से बाहर निकल कर जब आप देना शुरू करेंगे, तो जो कुछ भी आपको चाहिए वो खामखा आपको मिल जाएगा। और अगर इन चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी और किसी और को दे दी जाएंगी जो इसको डिज़र्व करता है। इसीलिए हम तमाम लोग सिर्फ, हर वक्त मैं यही सोचता रहता हूँ और फिगर आउट करता रहता हूँ कि कहीं मेरे से कुछ ज़्यादती या जुल्म तो नहीं हो रहा अपनी ज़ात पर या उस काम पर या जो चीज़ें ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं। और जहाँ जहाँ गलती होती है आदमी रुजू कर लेता है, चीज़ों को ठीक करके फिर आगे बढ़ जाता है। तो यही असल काम है जो करने का था, और वही हम आपके अब हम कर ये सब कुछ आपके साथ ऑन एयर रहे हैं, आपके सामने रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा फर्क पड़ जाता है।
3: बहुत आगा जी, आप यकीन करें आप तो बस क्या है बस। और सबसे बड़ी बात पता है आपको, पता है कि जैसे अभी अभी आपकी जो कॉलर आई हुई थी और मुझे ये बात बोली थी, ऑडियो वाली बात हो रही थी, रियली मुझे भी ऑडियो पता है, मुझे इतना फैसिनेट करता है रेडियो सुनना। ये मुझे इतने बड़े हलचल वाली दुनिया के अंदर जब आप रेडियो सुनते हैं, एक अजीब सी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है,
0: क्योंकि वो आपका पर्सनल अच्छा लगता है। आपके कानों में जो आवाज आती है वो लगता है आपके लिए, हाँ। वो आपके घर के लोग लगते हैं, आप विजुलाइजेशन, आप अपनी बहुत सारी सेंसेस यूज करती हैं। ये तमाम चीजें जब आप यूज करती है ना, तो चीज आपकी अपनी हो जाती है, आपको आप उस चीज से रिलेट करते हैं, उस चीज को ओन करते हैं, और फिर उस चीज के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम चीजें जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा लगता है। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। साथ साथ और भी लोग हैं, लाइंस मेरे पास दो हैं, इसलिए मैं कोशिश करके साथ साथ बाकी लोगों को भी लेता चला जा रहा हूँ। रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर।
4: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम।
4: सर, जस्ट कॉल्ड इन टू कांग्रेचुलेट यू एंड रेडियो आजाद टीम फॉर सेलिब्रेटिंग 14 इयर्स। पिछले 5 साल से आई हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ दिस टीम।
0: कैसा हमने आपके, हमने आपके साथ क्या-क्या ज्यादतियां की हैं श्रद्धा जी, बताइए ना।
4: सर, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई हैव बीन अ पार्ट सिंस लास्ट 5 इयर्स। बहुत कुछ सीखने मिला है, हाउ टू बिल्ड अ टीम, टीम के साथ कैसे काम करना है, हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी आर डूइंग, और कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, बहुत कुछ सीखने मिला है।
0: ये मुझे बताएं, ये जो हम क्लिप्स वगैरह आप सुनते हैं शो में, जैसे आशीष जी के क्लिप्स होते हैं, हमारे क्लिप्स होते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा दो मेन लोग जो इन्वॉल्व हैं रेडियो के साथ, वो मैं और आशीष जी हैं। पिछले 5 सालों में क्या सही से आपने सच बताना है, ठीक है, भगवान को हाजिर नाजिर जान के बताना है आप, ठीक है। ओम की आवाज पहले अपने अंदर पैदा करें और उसके बाद मुझे ये बताएं कि जितनी बातें ऑन एयर बताई जाती हैं और जितना प्यार और जितनी सख्तियां और जो कुछ भी क्लिप्स में नजर आ रहा है, ये सब कुछ आप किसको फील होता है ये?
4: जी सर, काफी कुछ बहुत हद तक रिलेट किया जा सकता है और मतलब आपके शोज और आयशा जी के शोज जब भी सुनते हैं तो काफी कुछ सीखने मिलता है, बीइंग हाउ टू बी प्रैक्टिकल. बहुत सारी चीजें आपके शोज से भी मिलती हैं कि प्रैक्टिकली कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकता है कोई. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फील इज कि जो हो गया सो हो गया, जो आगे आने वाला है उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये भी काफी हद तक सीखने मिलता है. सो इट्स अ रियल ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ रेडियो आजाद टीम एंड टू बी विथ यू ऑल.
0: So grateful. Thank you very much. The feeling is mutual. And we are actually honored for your presence and all the services and all the time that you give to Radio Azad. So very grateful. Thank you very much, Radha ji. Meherbaan hai, humare saath karte hain unse baat. Radio Azad, you're on the air.
5: Assalamu alaikum, Khan ji.
0: Wa alaikum assalam, Meherbaan. Kya hal chal hai?
5: बेहतरीन, जबरदस्त. आपके साथ 11 साल का सफर हमारा पूरा हो गया खान जी.
0: इसका मतलब
5: तकरीबन 11 साल. हाँ जी,
0: पता ही नहीं चला भाई,
5: ये वाकई नहीं पता चला कैसे गुजर गया ये 11
0: सालों में. क्योंकि हमारी जिंदगी में तो कुछ चेंजेस आई, लेकिन आपकी तो पूरी जिंदगी ऊपर नीचे होगी सारी की सारी.
5: ये खान जी जो स्पीच पावर है ना, जो जिना साहब देते थे या गांधी साहब या इन जैसे जो बड़े लीडर थे, उन्होंने देख ले दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया. और आपकी भी इनके जैसी ही स्पीच है जिसने मुझे कहीं से कहीं पहुंचा दिया. हम तो अवाम है ना,
0: हम भी अवाम ही हम अवाम की आवाज बन गए ना. अवाम ही है जो आपके दिल और दिमाग पे गुजरता है, बस वो भी हमारे पे ही गुजरता है. तो हमने कहा चलो इसकी कोई ना कोई, तो कब तक घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, यू नो पहाड़ों चट्टानों के पीछे छुपते रहेंगे, तो क्यों ना इन चीजों के बारे में बात की जाए. बाकी खुद हो जाएगा जो भी होना.
5: हम दुआ करते हैं, पहले नहीं थे करते, अब करते हैं कि आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमा.
0: तो पहले क्यों नहीं करते थे?
5: पहले पता नहीं था इस चीज का.
0: पहले सिर्फ सुनते थे हम. बहुत सारी चीजें हमें ये नहीं पता थी कि हमने करनी है. हम समझते थे कोई और कर रहा है और हम इसका फल एंजॉय करेंगे. फिर हमें समझ आया कि फल एंजॉय करने के बाद उसके अंदर से जो बीज निकलता है फल के बाद, उस बीज को लगाना है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है.
5: खान जी, इस चीज का पता भी नहीं था कि कोई आसानी किसी के लिए की जा सकती है या हमारे लिए भी कोई आसानी हो. ये मेरे ख्याल से जहलियत का दौर था, ये क्या था पता नहीं, लेकिन अजीब सा दौर था.
0: देखो 14 साल गुजरने के बाद भी मैं जब आसानी के, मेरी पहले तो ये समझना है कि मैंने ये काम हमने क्यों शुरू किया. ये बोल के लब आजाद हैं तेरे, मेरी जिंदगी बेइंतहा मुश्किल जिंदगी थी. सोचने वाले लोगों की जिंदगी जो होती है ना, या जब आप थोड़े से भी डिफरेंट होते हैं उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है और उसको अकेला काटना बहुत मुश्किल हो जाता है. अपनी ज़िंदगी के पहले 28-30 साल में बिल्कुल चुप था, मुझे लोगों ने बहुत कम इस तरह बात करते हुए देखा था. और वो मेरे अंदर चीज़ें थीं और वो उबल रही थीं. मैं कहना चाहता था लेकिन मामलात, हालात, वाक़यात, इन्वायरमेंट, फैमिली, लोग, यू नो जिन लोगों का ठेका था, किसी का मज़हब का, किसी का दुनिया का, और ये सब खुद भी मिज़रेबल थे और हम भी मिज़रेबल थे और कोई किसी का कोई पुरसाने हाल भी नहीं था और कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी. तो फिर जब मैं रेडियो पे आया, मैंने देखा कि ये शुरू में जब मैं रेडियो पे आया तो म्यूज़िक और चिट चैट और गपशप ही लगाने आए थे, लेकिन जब मैंने देखा कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि, और फिर मुझे समझ आया कि क्यों जब मिलिट्री कूज होते हैं, यू नो जब बगावतें होती हैं, तो क्यों रेडियो और टीवी चैनल्स जो होते हैं उन पे पहले काबू पाया जाता है. ये जो ज़राए अबलाग जैसे कहते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी. दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर. आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद. दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.
6: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
7: Inspire FM.
8: Inspire 105.1 FM.
9: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
10: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
11: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
12: Salma was famous among her relatives and friends for her kindness, affection and loyalty. The scholars have called her the great, the learned and the visionary lady who had helped in different situations to solve various problems.
13: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
14: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001234774 core.org.uk.
15: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں, کبھی جھکتی نہیں, کبھی مٹتی نہیں. اعتدال, حریت فکر اور سچائی کا پرچم, آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز, قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں, حق کی آواز, ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے, ذہنوں کو روشن کرے. ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
16: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
17: بچپن سے سنتے آئے ہیں, یہ نہیں کہنا, وہ نہیں کرنا, سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں, ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
18: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم. A very very warm welcome to the show. سن رہے ہیں جی آپ بول کے لب آزاد ہیں تیرے.
19: اور پھر میں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ اس کتنی پاورفل چیز ہے.
0: پھر جی کتاب پڑھنے سے مجھے پتہ چلا کہ سننے کا دھیان, یہ پہلی جو چیز بتائی گئی یہ بہرے ہیں اور گونگے اور اندھے تو بعد میں ہوتے ہیں, تو وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو مس کر رہے ہیں, اور سامنے تھے چیزیں, ریزلٹس سامنے تھے, بس ہاتھ مجھے ڈالنا تھا صرف, لیکن اس کے لیے سوچنا تھا, سمجھنا, ایک پلاننگ کی ضرورت تھی, اور جب میں نے وہ کام کرنا شروع کیا تو زندگی اتنی آسان ہو گئی, اور جیسے جیسے میں بولتا گیا ویسے ویسے میں اپلائی کرتا گیا اپنی ذات کے اوپر, تو ریزلٹس بھی آنا شروع ہو گیا, وہ ریزلٹس اب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا, تب مجھے سمجھ آئی رب کیوں اس نے ہمارے لیے زندگی کو اتنا آسان کیا ہوا ہے. رشتے ایک آسان کام تھے, دنیا ایک آسان کام تھا, ہم نے اس کو مشکل کیا, پھر اس مشکل کو تکلیف دہ حد تک عذاب بنایا, اور پھر اسی میں سے ہم کچھ نہ کچھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے کمال کیے, خود ہی اپنے راستے میں کھڑے ہیں, خود ہی فرکشن, خود ہی ویئر اینڈ ٹیئر کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہر انسان جو ہے وہ اپنی پوری لائف کا جو پوٹینشیل ہے اس میں سے 2% 5% کہیں پہنچ پاتا ہے, لیکن ان تمام نان اسینشلس کو اگر راستے میں سے ہٹا دیا جائے, ایموشن کو صحیح طریقے, ایموشن کو ویکنیس کے طور پہ یوز کرنے کے بجائے اسٹرینتھ کے طور پہ یوز کیا جائے, لاجک کو, گفٹس کو اور لوگوں کو ساتھ ملا کے اگر جوڑ دیا جائے تو میریکولس افیکٹ ہو سکتا ہے, اور وہ 2% 200% اگر انسان اپنی زندگی میں ریزلٹس دے سکتا ہے, اور میں نے پھر اپنی زندگی کے 10-15 سالوں میں وہ ریزلٹس دیے جو میں پچھلے 25-30 سالوں میں نہیں دے سکا, اور اسپیشلی پچھلے 5 سالوں میں میں نے اپنی زندگی کو ان لائنس کے اوپر میں جتنا پرسنٹیج بڑھاتا چلا جا رہا ہوں, جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں, جو کچھ میں کر رہا ہوں آن دی ایئر, وہ اس سے ریزلٹس میرے جو ہیں پوری زندگی ایک طرف اور پچھلے 5 سال ایک طرف, تو اتنا اچھا ریزلٹس آ سکتے ہیں, تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دیں. کئی لوگ میرے ساتھ چلے, انہوں نے کیا, ان کی زندگی کمال ہے, جس میں سے ایک عثمان بھی اور باقی بھی کچھ لوگ شامل ہیں, اور جو لوگ آج بھی انہی سٹرگلز میں ہیں جو 2, 4, 5, 10 سال پہلے تھے, وہ اسی طرح اسی سٹرگل میں تھک جائیں گے, اک جائیں گے, پک جائیں گے, ایگزاسٹ ہو جائیں گے, اور کسی چیز کو اینڈ تک نہیں پہنچا پائیں گے, اور وہ اگر خوش ہیں بھی تو وقتی طور پہ صرف ایکسائٹمنٹ ہے ان کی, وہ لمبی ہیپینس ان کو نہیں مل سکتی. تو ساتھ ساتھ اگر آپ فگر آؤٹ کریں گے کہ میری انسیکیورٹیز, میرے کمپلیکسز, میرے چیلنجز کیا ہیں, اور میرا گفٹ اتنا اسٹرانگ ہے, مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے, اور باقی ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں گی, تو یہی زندگی آرٹ کا نمونہ بن سکتی ہے, اور آپ آرٹسٹ بن سکتے ہیں, اور ہر بندہ جو دوسرا چھوٹے موٹے آرٹسٹ کو دیکھ کے ہم مطلب عجیب آ کا شکار ہو جاتے ہیں, تو لوگ آپ کو بھی سب سے بڑا آرٹ زندگی بنانا ہے, اپنی زندگی کو آرٹ کا نمونہ بنانا ہے, اس سے ریزلٹس نکالنا ہے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے, اور وہ اسی میں آپ کی آسانی ہے, جیسے رب کہتا ہے تم شکر ادا کرو میں تمہارا شکر بڑھا دوں گا, تو جتنے بھی شکر گزار لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں ان کی زندگی کو 4 چاند لگا دیے, دوسروں نے بھی, اور ایکچولی شروع انہوں نے خود کیا تھا, تو یہ وہ پورا پروسیس ہے جو کہ ایکسپلین کرنا تھا اسی بہانے. جی عثمان.
5: ہاں جی, آپ کا پچھلے کوئی جتنی دیر سے آپ ریڈیو شو میں ہو, کوئی ایک لسنر جو آپ کو یاد ہو, مجھے جس نے ہٹ کے بات کی ہو؟
0: نہیں, ہٹ کے بات کرنے والے کام ہیں, لیکن اور اپنا اپنے پرسنالٹی لوگوں کی ہوتی ہے, جب بھی میں 100% الرٹ ہوتا ہوں نا اور چپ بیٹھا ہوں, تو اس کا مطلب ہے ایم آل ایئرز, آپ نے کوئی نئی بات کی ہے, آپ نے کوئی نیا کام کیا, یا کوئی نیا مشورہ دیا, یا نئی تھاٹ لے کے آئے, یا کوئی اوریجنل تھاٹ ہے آپ کی, اور آپ جو اگر میں آپ کو 5 سال سے جانتا ہوں تو پچھلے 5 سال والی باتیں آپ نہیں کر رہے, اگر آپ روندوں ہیں تو 5 سال سے رو رہے ہیں, پریشان ہیں تو 5 سال سے پریشان ہیں, فائنینشیل ایشوز ہیں تو 5 سال سے وہی فائنینشیل ایشوز ہیں, آپ یقین کریں میں

0: तक आप अपने आप को सयाना समझते रहेंगे लाइफ के सब्जेक्ट में, आप हमेशा फेल होंगे, क्योंकि आप या तो डॉक्टर हैं, हमें लोग कहते हैं जी आप, वो कहते हैं जी मैं डॉक्टर इमरान, तो वो डॉक्टर जब आप कहते हैं ना, तो इसका मतलब है आपके पास डॉक्टर होने की वजह से कुछ है और बहुत कुछ आप कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो जब आप इमरान कहेंगे सिर्फ, पीछे फौजी नहीं लगाएंगे, मतलब अपना रैंक नहीं लगाएंगे, या पीएचडी नहीं लगाएंगे, या बीए मास्टर्स पीएचडी या ये सब लगाएंगे के अलावा, जब आप अपना नाम लेंगे तो आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, तो समझ आएगी। अक्सर लोग कहते हैं जी आप क्या करते हैं, उन्हें कहा जी मैं डॉक्टर हूँ, नहीं आप कौन हैं, वो कहते हैं जी मैं डॉक्टर हूँ, तो वो एक्चुअल में आप कौन हैं का मतलब आप कौन से इंसान हैं, क्या सोचते हैं, विजन क्या है आपकी, करना क्या चाहते हैं आप, अब तक क्या किया है, आगे कहाँ जा रहे हैं आप। जब आप इन चीज़ों के बारे में काम करने की और बात करने की कोशिश करेंगे, मैंने अपने एक बात जो मैं अपने लिसनर्स को क्रेडिट देना चाहूँगा, वो जिस तरह सवाल पूछते हैं, जिस तरह बात करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जितनी वैल्यू एडिशन मेरे अंदर हुई है पिछले 14 सालों में, और उससे पहले जो मैं रेडियो बोल के लब आजाद तेरे 3 साल मैंने और भी किया, इन 17 सालों में मेरी पूरी ज़िंदगी एक तरफ, और ये इन 17 सालों में इतनी मेरी लर्निंग हुई है जो मैं कभी भी नहीं सोच सकता था। मैं क्योंकि हज़ारों लोगों से बात थोड़ी करता था हर साल में, और नए नए लोग, नए नए आइडियाज़ इस काम में होने की वजह से, इस काम को करने की वजह से जो मैंने सीखा, जो चीज़ें मैं करना चाहता था उसके लिए मैं परमानेंट, मेरे तमाम सारी सेंसेस जो हैं अलॉन्ग विद 6 सेंस हर वक्त ऑन रहती हैं कि मैं कोई नई चीज़ देखूं, सोचूं, समझूं, अप्लाई करूं जो मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं। मेरा जहन हर वक्त कंटेंट बनाता रहता है। मैं सिर्फ एक काम अब ज़िंदगी में कर सकता हूं जब तक मैं बोल के लब आजादें तेरे कर रहा हूं। मैं सिर्फ बोल के लब आजादें तेरे कर रहा होता हूं और उसी से ही मुझे सारे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। मैं जो बन पाया हूं वो भी इसकी वजह से, और जो नहीं बन पाया वो भी इसी की वजह से। तो मेरे लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है, और लोगों ने आकर जो कंट्रीब्यूट किया है, जो इज़्ज़त अफजाई की है, जो प्यार मोहब्बत दिया है, जो दुआएं की हैं, बहुत सारे लोग ये वीडियो का जब कंटेंट सुनते हैं या ऑडियो का, वो कहते हैं हमने कभी ऐसा रेडियो शो या टीवी शो नहीं देखा, और स्पेशली जहाँ से हम लोग आ रहे हैं वहाँ तो लोग शेयर ही नहीं करते, प्योर जज्बात नहीं शेयर कर सकते, लोग क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये क्या होगा, वो क्या होगा, आई वुड कम अक्रॉस लाइक दिस लाइक दैट, यही चक्रों में मेरा बनता है नहीं बनता, करना चाहिए, अपने अंदर की लड़ाइयों से ही लोग नहीं फारिग हो रहे, कॉन्ट्रीब्यूट उन्होंने क्या करना है। सो जो जो इससे बाहर निकला है उसकी ज़िंदगी में मैंने चेंजेस देखे हैं, जो जो इससे बाहर नहीं निकल पाया वो ना अभी और ना कभी, वो इसी तकलीफ में, परपेचुअल मिजरी जिसे मैं कहता हूँ, एक कांस्टेंट अजाब है जिसका हम शिकार हैं, और ये हमने अपने अंदर अपनी सोचों से पैदा किया है। अमीर तरीन लोग भी उतने ही कमज़ोर हैं, डिग्रियाँ लेने वाले भी उतने ही कमज़ोर हैं जितने जिनके पास डिग्रियाँ नहीं हैं। अमीर भी इस अजाब में, डर के अजाब में, और ऐसा करना और वैसा नहीं करना के बीच में फंसे हुए हैं, और गरीब भी इसी तरह ही हैं, कमाल करने वाले लोग भी हैं, बाकमाल और बेकमाल, अकलमंद कम अकल, सारे इसी चक्कर का शिकार हैं, हालांकि काम बहुत सिंपल था कि नहीं उस्मान?
1: हाँ जी, आपका आने वाले इस साल में या फिर आने वाले कुछ सालों में कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी सरप्राइज जो अभी आप बताना चाहते हैं आज?
0: अभी तो ये रेडियो आजाद जो है ना, इन अगले 8 महीनों में रेडियो आजाद वो सब कुछ करेगा जो अभी तक रेडियो आजाद ने पिछले 14 साल में नहीं किया। हम जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो सिस्टम, एक भी हम सिस्टम बनाने के प्रोसेस में हैं, जब एक चीज़ एक जगह तक जानी होती है तो उसका पूरा असेंबली लाइन ही और होती है, उसकी जो, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, उसके जो टैलेंट्स चाहिए होते हैं, जो लोग चाहिए होते हैं वो और होते हैं, जो सेट ऑफ बिलीव, सेट सिस्टम जो चाहिए होता है वो और होता है। उसी चीज़ को ये बिल्कुल ऐसा, अगर आप एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं और मैंने आप एक छोटा पहले बनाते हैं, वो 500 माइल तक या 1000 मील तक जाता है, तो उसका टोटली डिफरेंट सिस्टम होता है। उसी सिस्टम के अंदर बाकी चीज़ें डाल के उसकी पावर को इन्हेंस कर दिया जाता है कि ये 2000-4000 मील तक आगे ये लॉन्च किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह, या कोई भी सैटेलाइट जैसे होती है, जैसे आप चांद तक पहुँचें, ये डायरेक्ट नहीं पहुँच गया, बीच में छोटी छोटी इंडेवर्स करते हैं आप, ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। तो पहले जो आपने देखा है, जो चीज़ ऊपर तक जाती है उसके फ्यूल के जो टैंक्स होते हैं ना, वो साथ साथ गिरते जाते हैं जो जो चीज़ यूज़ हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वज़न नहीं चाहिए होता आपको। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, अब हम उस जगह पर हैं जहाँ पर आगे कितनी बड़ी फ्लाइट होगी और भरनी है हमने, वो अभी डिसाइड होगा। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और बाकी जो फिल्म्स आने वाली हैं, जो इंशाल्लाह मैं काम कर रहा हूँ जिन चीज़ों के ऊपर, वो पाकिस्तान की एक फिल्म है जो आनी है, वो पता नहीं कब आएगी।

0: क्योंकि पाकिस्तान में किए हुए काम का कुछ नहीं पता होता कब क्या होगा, वहाँ इन्वायरमेंट ऐसा है, हर चीज़ अनप्रडिक्टेबल। जो फिल्म है, कुछ प्लेज़ है जिसके ऊपर हम काम करें, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल की एक दो चीज़ें आने वाली हैं, कुछ डोमेस्टिक लेवल की एक दो चीज़ें आने वाली हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा रेडियो आज़ाद के रेफरेंस से कुछ चीज़ें हैं जो कि वो जो भी इंटरनेशनल भी काम है आएगा तो रेडियो आज़ाद में, और जो नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा वो भी रेडियो आज़ाद के ऊपर ही आएगा। काम हम सारे मिलकर सारी चीज़ें रेडियो आज़ाद पर ही कन्वर्ज करती हैं। सो बहुत सारी नई चीज़ें, लेकिन एक दो सरप्राइजेज हैं इंशाल्लाह वो वक्त के ऊपर, और तब तक लोग, अभी तक हमारे लोगों ने जो सीखा है, हमने जो सीखा है उस सीख को इनकॉर्पोरेट करके हमने आगे कैसे बढ़ना है, इसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा है, बजाय इसके कि हम नई नई चीज़ें दें। इस साल में हम एक कुछ चीज़ें ऐसी बनाना चाहते हैं जिसके बाद हम अक्सर आपको चीज़ें दे सकें, जैसे बाकी बहुत सारी चीज़ों में हम करते हैं।
1: चले इंशाल्लाह आपके साथ है खान जी। तो सफ़र अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, और हमने जो पेटी है ना वो सीट बेल्ट वो बांध ली है आपके साथ, तो देखें कहाँ तक जाते हैं आपके साथ।
0: बिल्कुल ठीक, हमने हम ना क्योंकि 11-12 साल में बहुत कुछ बदल गया है, जैसे रेडियो आज़ाद की स्लोगन लाइन बदल गई। रेडियो आज़ाद जब शुरू हुआ था तो वॉइस ऑफ द पीपल था, और उसके बाद इसको वे यो वॉइस मैटर्स किया गया है। रेडियो आज़ाद का लोगो और था, लोगो अभी आपको चेंज हुआ मिलेगा। रेडियो आज़ाद की जो आपको जो म्यूज़िक यू नो जो मिलता है आजकल रेडियो आज़ाद का जो आपको अच्छा लग रहा है, तराना जो है रेडियो आज़ाद का एंथम जो है वो बदल चुका है। रेडियो आज़ाद का पूरी कलर स्कीम बदल चुकी है। जब अगर आपने पहले 10-15 साल पहले देखा होगा, एक दीवार थी उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बैनर हुआ करता था, स्किन लगी होती थी, वहाँ से फिर हमने ये चीज़ें शुरू की हैं, और उसके बाद अब रेडियो आज़ाद की पूरी कलर स्कीम, वीडियो क्वालिटी, चीज़ें बदल चुकी हैं। और शो बोल के अलावा आज़ाद ने तेरे बहुत चेंज हुआ है, हमारी टीम में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, बहुत सारी नए चेहरे, नई आवाज़ें आप लोगों तक आई हैं। उसमें रेडियो आज़ाद की टीम ने भी इवॉल्व किया है कुछ। टीम को इवॉल्व करना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के साथ लोग आते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो जैसे देसी जो कल्चर होता है ना, हम यू कहते हैं ना, यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ द जंगल बट यू कांट टेक द जंगल आउट ऑफ द बॉय। हम लोगों को जिन चीज़ों के, जैसे किसी कंपनी में काम करते हैं, ये प्रोफेशन होता है, वहाँ हमारा टोटली और बिहेवियर होता है, इसीलिए मैं बिहेवियर के ऊपर इतने शोज भी करता रहता हूँ। लेकिन जब हम कोई घर में, हमारा टोटली और बिहेवियर होता है। मैं अपने घर के अंदर बिहेवियर चेंज करने वाला, जब तक आप का उठना ऑटोमेटिक वायरिंग जो आपकी है ना ब्रेन की, जब तक ये वायरिंग एक सिस्टम के ऊपर नहीं जाएगी, जैसे खुदा बनाना चाहता है इंसान को, वो उस वक्त तक उसका पोटेंशियल कभी सामने नहीं आएगा। इसीलिए हज़ारों साल लग गए इस काम में, वरना अगर हम खुद ये सिस्टम बना लेते, क्योंकि वो अभी सिस्टम के बीच में ठेकेदार आ जाते हैं, वो बनने नहीं देते सिस्टम को, वो अपनी अपनी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जब तक आप एक चीज़ के साथ सिंसेरिटी के साथ फोकस नहीं करेंगे एक मेन गोल पे और उसके बाद छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स पे, तब तक बहुत सारी चीज़ें आ नहीं सकती। तो बहुत मैं ऐसा क्यों, क्योंकि मैं जिस घर में बड़ा हुआ था वहाँ मेरा फोकस किसी वजह से खान जी ने या मेरी कुछ वीकनेसेस ने उसको फोकस कर दिया, क्योंकि मुझे सर्वाइव करने के लिए भी कुछ बेसिक चीज़ें भी नहीं आती थी करनी। उसके बाद मैं जिस इंस्टीट्यूशन में गया वहाँ पर सब कुछ ही फोकस में था, और उसके बाद जो सारे सिस्टम बने हुए थे वो हर बंदे को अपने अपने काम और अपनी चीज़ों का और अपनी ज्यूरिसडिक्शन का और अपने रोल डिफाइन किए गए थे। लेकिन ये जैसे जैसे हम ये ज़िंदगी में हम आते हैं, क्योंकि घरों में भी ऐसा सेटअप नहीं, इसलिए घरों में भी देखें पहली पीढ़ी स्ट्रगल करती है, दूसरी पीढ़ी भी स्ट्रगल अगर कर रही है ना, और तीसरी पीढ़ी भी अगर स्ट्रगल कर रही है, तो इसका मतलब है इस पूरी चीज़ में सब कुछ है, लेकिन इस पूरे तीन पीढ़ियों में एक भी अकल वाला इंसान पैदा नहीं हुआ। यानी कि अगर ये तीन पीढ़ियों का मतलब है कि आप थर्ड जनरेशन है आपकी, और अभी तक आप हैंड टू माउथ हैं, अभी तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं मिली है, इसका मतलब है पिछले तीनों जनरेशन के लोग, उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया। वरना तीन जनरेशन के अंदर सब कुछ बदल जाना चाहिए, आपके फाइनेंसेस बदल जाने चाहिए, आपकी सोच बदल जानी चाहिए। दादे का जो प्रॉब्लम था अगर वो फादर को भी है, और फादर का प्रॉब्लम बेटे तक आ गया, तो इसका मतलब है ऊपर के दो बंदे निकम्मे थे, उन्होंने सेल्फिश होकर चीज़ें की, ब्रेन को इस्तेमाल नहीं किया, वो फियरफुल थे। इसीलिए आज तीसरी जनरेशन को भी वही तकलीफ उठानी पड़ रही है, हालांकि एक ने सही काम किया और दूसरा उससे आगे ले कर चलेगा, तीसरा उससे आगे ले कर चलेगा, रिले रेस की तरह। और हर बंदा अपनी अपनी लाइट होगा और अपनी स्पीड बढ़ाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो फाइनेंशियल फ्रीडम को भी पहुंचेगा। इसी तरह अगर ब्रेन जहालत में बंद था, चौथी पीढ़ پشت پیڑھی کا، پھر تیسری کا اور پھر دوسری کا، اور اسی طرح اس کو لے کے آئے وہ زندگی میں، تو چوتھی پیڑھی بھی سٹرگل اور سفر کرتی رہے گی. انٹلیکٹ کو بھی بڑھانا آپ کا کام ہے جس پیڑھی میں بھی آپ ہوتے ہیں. اصل آنر کرنا اپنے فور فادرس کو، اپنی فیملی کو، اپنی بلڈ لائن کو، رب کو سب کرنا ہوتا ہے. سسٹم بنانا اگلوں کے لیے، پچھلوں کے عذاب آگے نہ چلانا، اس کو روک کر نئی چیزیں بنانا، نئے کام کرنا اور کچھ نئی چیز بنا کر دے کے جانا. اسی لیے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں ایکچوئل میں، جب اگر آپ ان کی بات سنیں تو وہ صرف وائننگ کر رہے ہوتی ہیں پچھلے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی، دوسری تیسری جنریشن کی، کیونکہ انہوں نے اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہو نہیں رہے ہوتے، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم آج تک اس لیے غریب ہیں کہ پچھلے ایسے تھے، ہم آج تک اس لیے جاہل اور کم عقل رہ گئے کہ پچھلے ایسے تھے، انہوں نے یہ یہ یہ نہیں کیا بلکہ الٹا یہ ہم پر ڈال کر چلے گئے. رب آپ سے یہ نہیں پوچھے گا پچھلوں نے آپ کو کیا، آپ نے کیا کیا. جب تک آپ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے آپ کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھیں گے اور وہی سائیکل جیتے رہیں گے آپ. اور میں کسی بھی ایسے سائیکل کا حصہ نہیں بنتا. میں پچھلے 10 سالوں میں، میں نے جتنے کام چھوڑے، جتنے بزنسز چھوڑے، جتنے رشتے چھوڑے، وہ گول گول گھوم رہے تھے. جس چیز کے اندر میں ہوں گا میں نے اپنے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا، وہ چیز آگے بڑھے گی، فائنینشلی بھی آگے بڑھے گی، اس کا ارتقا ہوگا، وہ ایولیوٹ کرے گی، ایولیوشن میں وہ جائے گی، آہستہ آہستہ اس میں پروگرس ہوگی. اگر میں کسی رشتے میں ہوں تو رشتہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوگا، وہ ڈیٹیریوریٹ یا ڈیٹریمنٹل ہو کے نیچے گر رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہے کہیں پر کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا. جتنے بزنسز میں نے پچھلے 5-7 سالوں میں، میں نے 2-3 بزنسز میں بالکل میں پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہ ان بزنسز نے آگے کہیں نہیں جانا تھا. آج بھی وہ بزنسز یا وہیں کھڑے ہیں یا اس سے بہت نیچے چلے گئے، کیونکہ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی، وہ جو ایلیمنٹس تھے، ان میں ہارمنائزنگ افیکٹ نہیں کریٹ ہو سکتا تھا. لیکن جتنے کام میں نے کیے، جس کو میں نے نہیں چھوڑا، وہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گئے. سو بالکل، جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ آپ پرابلم کا حصہ ہیں یا سولوشن کا، تو پھر آپ سولوشن کے لوگ ڈھونڈیں گے اپنے ارد گرد، اور پھر آپ دیکھیں کمال کیسے ہوتے ہیں. آپ اپنی کچھ چیزیں چھوڑیں گے، دوسرے لوگ اپنی کچھ چیزیں چھوڑیں گے، اور تھوڑی تھوڑی ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ جب چیزیں بنیں گی تو کوئی بندہ بھی کمپرومائز نہیں کر رہا ہوگا، تھوڑا تھوڑا سب کو ملے گا، اور مل کر ہم بہت زیادہ کریٹ کریں گے. ان اصولوں کے اوپر جتنے رشتے میں نے پچھلے 10 سال میں بنائے، جتنے بزنسز کے کام میں نے پچھلے 10 سال میں کیے، سب نے کمال کیا، اور اس سے پچھلے سالوں کی ساری چیزیں میں بھول چکا. بس مجھے صرف ایکسپیرئنسز یاد ہیں، کیونکہ اس سے آئیڈیاز بنتے ہیں، اس سے رزلٹس آپ کو ملتے ہیں، اس سے آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے. بار بار آپ وہی چیزیں نہیں سیکھتے. مہربانی ہمارے ساتھ کرتے ہیں ان سے بات. ویڈیو آزاد، یہ رون دیے. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہے
2: کو بہت مبارک ہو 14 ایئرز، اور عائشہ جی کو بھی.
0: آپ کو بھی بہت مبارک ہو. آپ کے کتنے سال ہو گئے ریڈیو آزاد کو تکلیف دیتے دیتے؟
2: سر آئی تھنک 7 یا آئی تھنک 7 ایئرز ہو گئے.
0: ٹھیک ہے. اور اس کے بدلے میں ریڈیو آزاد نے آپ کو کتنی تکلیفیں دیں؟
2: نہیں سر، کافی ساری آسانی کی ہے ریڈیو آزاد نے.
0: آپ کو محسوس، آپ کی ذات کے اندر کوئی فرق محسوس ہوتا ہے پروگرامنگ اور باقی چیزیں چھوڑ کر؟
2: سر مجھے لگتا ہے میں تھوڑی ایوالو کر گئی ہوں، اینڈ انڈرسٹینڈنگ بڑھ گئی ہے چیزوں کی، اور کافی ساری آئی تھنک چینجز آئی ہیں مجھے لگتا ہے.
0: مزید کلیئرٹی آف آئی ہے کچھ تھاٹ میں؟
2: ہاں جی بہت ساری.
0: کچھ چیزیں آپ نے اپنے لیے مزید آسان کی ہیں زندگی کی، سوچنے کے طریقے، کام کرنے کے طریقے؟
2: سر سوچنے کا تو پتہ نہیں، وہ تو آپ کا شو سن کے ہو جاتا ہے جب بھی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، یا عائشہ جی کی جو تسلیم کے ساتھ شوز ہوتے ہیں ان سے ہو جاتی ہیں. بٹ اوور آل ویسے بہت آسانی کی ہے. آپ کے شوز سے سیکھ کے یا آپ سے پوچھ کے وہ امپلیمنٹ جو بھی میں نے کیا ہے اللہ کا شکر ہے اس سے، تو بہت ساری چیزیں.
0: جب آدمی کسی ٹیم کا حصہ بنتا ہے، جب آدمی کسی پروفیشنل کمپنی کا حصہ بنتا ہے یا کسی آرگنائزیشن کا، یا کام کرنے وہاں جاتا ہے، اپنا رول پلے کرتا ہے، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ وہاں پہ کام کرنے سے آپ کی ذات پہ، آپ کے سوچنے پہ، آپ کے ریزلٹس پہ، آپ کے آؤٹ کم پہ اتنا فرق آئے گا؟ کبھی سوچا تھا آپ نے کہ کسی کمپنی کو یا کسی آرگنائزیشن کو یا کسی گروپ کو جوائن کرنے سے میری ذات میں 7 سالوں میں اتنے فرق آ جائیں گے؟
2: نہیں سر، نہیں سوچا تھا ایکچولی. کیونکہ بہت ساری آپ لوگوں کی اوور آل ٹیم میں بہت तो आई थिंक आप जिस तरह से लोगों को गाइड भी करते हैं, अपनी टीम को भी गाइड करते हैं और जैसे चीज़ें बताते हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. क्योंकि यूजुअली जैसा भी आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे ना, लोग फोकस्ड होते हैं एक दो चीज़ों के ऊपर ही, पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं.
0: लेकिन आपको क्या लगता है, वो जो पर्सनल ग्रोथ आपकी जब होती है ना, देखें आप फर्ज करो एक काम करते हो, उसके अगर आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, जैसे आपने मल्टीनेशनल, आप मेन स्ट्रीम में भी काम कर रहे होगे या आपने किया होगा, तो उसमें वो लोगों को कुछ चाहिए, हमने जिस काम के आपको पैसे दिए आप सिर्फ वो करें और घर जाएं, ऐसा ही है?
2: हाँ जी.
0: लेकिन कौन सा ऐसा काम है जिंदगी में, या कौन से कोई ऐसे रिश्ते आपने देखे हैं जिसमें रिश्ते के अंदर आप जाएं और आप इंसान इंसानी हालत में आना शुरू हो जाए?
2: हाँ जी, रेडियो से देखती
0: हूं. आपके इमोशंस जो हैं वो आपके काबू में आए और आप लॉजिकली चीज़ों को देखें और आप अपनी जात से बाहर निकलकर ऑब्जेक्टिवली भी चीज़ों को देख सकें.
2: हाँ जी,
0: ऐसे फायदे
2: आप लोग करते हैं.
0: हाँ, तो ऐसे फायदे आपने कहीं और, या आप किसी को जानते हैं या किसी और से आपने ये महसूस किया है कि मैं किन काम करने जाऊंगी और मेरे से सिर्फ मेरे वाला काम लिया जाएगा और बीच में मैं जहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूंगी इतना किया जाएगा लेकिन उसके बदले मुझे इतना कुछ मिलेगा, ये कभी सोचा था आपने?
2: नहीं सर.
0: और
2: पर्सनल ग्रोथ और कलेक्टिव उसमें नहीं सोचा था.
0: और वो एक देसी जगह होगी ये सो, इस बात पे ऐसी हंसी हर बंदे की निकल जाती कि देसी ग्रोथ आसानी और एक दूसरे के साथ, ये तो घरों में भी बहुत कम होता है, ऐसा ही है?
2: बिल्कुल ऐसा ही है.
0: तो अब क्या लगता है आपको, अगर आप वापस जाएं कि अगर आप 7 साल पहले जिस वजह से भी आई होंगी या जैसे भी यू बम्प्ड इनटू रेडियो आज़ाद, अगर वो चीज़ आप, या फिर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी शाय भी है और रेडियो का काम जो है, जैसे मेरी शाय है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसके बावजूद आपने ये स्टेप लिया और आप इसका हिस्सा बनी, तो आप कभी कभी सोचती हैं कि अगर मैं ना बनती तो मेरी, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में इस वक्त क्या होता और क्या ना होता? एनी आइडिया?
2: सेम लाइफ होती बहुत ही, आई थिंक जो जैसे मैंने अपनी लाइफ को पहले कभी छोटे होते हुए या किसी एक टाइम पे इन्विजन किया था, अब मुझे लगता है वो वैसे ही है जो मुझे चाहिए थी. एंड सेकेंडली, अगर मैं नहीं आती तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती. आप अपने बारे में जो सेल्फ डेवलपमेंट आप सिखाते हैं हमेशा, वो नहीं होता कभी भी. और बहुत सारी चीज़ों का, जिससे अभी आपके बहुत सारे कॉलेज भी कह रहे थे कि अल्लाह ताला से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड जो आपको इतना डराया जाता है हमारे कल्चर के अंदर, वो चीज़ें भी आप उनसे भी बाहर नहीं आते, नहीं आती मैं एटलीस्ट. तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी, कि मुझे लगता था ये नॉर्म है हमारे कल्चर में और ये चीज़ें हमारी जैसे देसी उसमें ऐसे ही होती हैं. तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई थी आफ्टर ज्वाइनिंग रेडियो.
0: इसका मतलब है 7 साल में आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ
2: जी.
0: उसके बाद आपकी खुशी का जो लेवल है, जैसे आप फील करती हैं अपने आप को वेयर एवर यू आर मेंटली, उस पे भी कुछ बेहतर आपको लगता है, उसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी और बैलेंस पैदा हुआ?
2: सर मुझे, मैं खुशी पे इतना फोकस नहीं करती, मैं अपनी सेल्फ कंटेंटमेंट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ. तो मुझे लगता है वो बहुत, जो मैं, जो मुझे चाहिए वो मुझे है मेरे पास.
0: आपके सुकून का जो लेवल है उसमें कोई फर्क पड़ा?
2: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो मुझे मिल गई है.
0: हाँ जी, तो क्योंकि जब आपको एक चीज़ मिल जाती है ना सुकून, जो अपने रब में दिखा है, तो उसमें से बाकी जो लेवल्स हैं ना उसका अगर आपको पता ना भी हो तो वो लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं. इसीलिए कंटेंटमेंट जो है, इत्मीनान कल्ब जिसे कहते हैं, दिल मुतमईन जिसके लिए जो है ना, वो हिंदी, क्योंकि आप आजकल यानी अरब हम ज़्यादा, मुतमईना जिसे कहते हैं ना, जब तक आप सुनना ना कहो ना, जब तक आप बरकाह ना कहो तो लोगों को समझ नहीं आती. पता नहीं तेल लगाने से हम बड़ा अवॉइड करते हैं खुद को. सो इन तमाम चीज़ों में बेहतरी हुई है. सो ये सुन के हमें अच्छा लगा कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ज्वाइन किया, उसमें आपने सपोर्ट किया, उसकी वजह से आपकी ज़ात पे इतने अच्छा असर हुआ. अच्छा, आप लोग ये अक्सर सोचते या पूछते हैं, ये सब कुछ इसी को दिखाने बताने सिखाने समझाने से क्या होता है? इससे लॉयल्टी बढ़ती है इंसानों के अंदर, इससे लोगों को क्लैरिटी बढ़ती है, इससे लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं, इससे लोग डिसाइड कर पाते हैं कि उन्होंने साथ रहना है कि नहीं रहना, इससे लोग आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोग्रेशन होता है उनकी ज़ात के अंदर, जो प्रोग्रेसिव डिस्कवरी होती है अपनी इग्नोरेंस के बारे में, उस पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, इससे रिश्तों पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, इससे इंसान के अंदर अख़ुवत पैदा होती है, भाईचारा पैदा होता है, फ्रटर्निटी सोरॉरिटी किस्म की फीलिंग आती हैं. एक्चुअल में आप किसी चीज़ से कनेक्टेड होते हैं और जब आप उससे डिसकनेक्टेड होते हैं, ये तो आपको लगता है कि आप कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी में इसलिए की जाती हैं. ठीक है.
3: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Monday, 31st of August, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. US and Iran trade strikes for first time in weeks. Number of people missing after Nepal flood rises to 4,247, with more than 900 dead. Priti Patel to be replaced by Tugendhat as Shadow Foreign Secretary. Early release scheme could see dangerous criminals released, conservatives warn. Thousands expected to turn out for Notting Hill Carnival Parade. 8 killed and 18 missing after ferry capsizes off Northern Cyprus. Djokovic in tears during US Open first round exit. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: इंस्पायर एफएम की उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकर्रम अब्बास। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। पाकिस्तान के वाइस प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने बरतानी के फॉरेन मिनिस्टर से लंदन में मुलाकात की। ईरान के प्रेसिडेंट ने अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियों और इक्तसादी दबाव की मुहिम को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने 47 बरस बाद शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली स्टेट्स की फहरिस्त से निकाल दिया। सामीन, ये थी इस वक्त की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Last time on Akhri Mojza.
2: फिर उसमें एक मजे की बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो औलादें हैं, एक नस्ल आ रही है इस्माइल से, दूसरी आ रही है इसहाक से। इस्माइल से मुतालिक ख्वाब है ज़िबा वाला, इसहाक की नस्ल में ख्वाब है भाइयों वाला, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नस्लों की तकमील हैं असल में, क्योंकि जो बनी इसराइल को दिया गया उसकी तकमील भी हमारे रसूल हैं। उनके आखिरी रसूल आए ईसा, और ईसा जाने से पहले कह गए अहमद आ रहे हैं, और इस तरफ थे इस्माइल जिनकी ज़बान से दुआ निकलवाई कि एक रसूल भेज दें। तो दोनों की तकमील और दोनों के ख्वाब मिलकर आकर रसूल सल्लम के ख्वाब में आकर जुड़ते हैं। आमिनीन मुहल्लिकीन रुसकुम व मुकस्सिरीन ला तखाफून, सूरतुल फतह के आखिर में। खैर, दैट वाज अ साइड नोट।

Once again, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aaj hum kuch mazeed sessions karne ki koshish karenge jisme ek do section aur I think mukammal ho jayenge. Abhi hum baat kar rahe hain tarteeb ke upar, sequence ke upar. Aur isko samajhne ke liye pehle main aasan si misal de dun aapko ki hum jab ek dusre se baat karte hain तो कभी कभार हमें एक दो या तीन चीज़ों का ज़िक्र करना पड़ता है, जैसे खाना भी ले आना और गैस भी भर देना, और ये भी, ये एक दो चीज़ की लिस्ट होती है आपके जुमले में ना, तो उस लिस्ट में एक पहली चीज़, फिर एक दूसरी चीज़, फिर एक तीसरी चीज़, जैसे मैंने दिन रात काम किया या मैंने रात दिन काम किया, पहले दिन फिर रात या पहले रात फिर दिन. जब इंसान इसे बात करता है तो उसके जहन में नहीं रहता उसने पहले क्या कहा था, बाद में क्या कहा था. अगर मैं आपसे पाँच मिनट बाद पूछूं आपने दिन रात कहा था या रात दिन कहा था, आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इसका इतना शौरी एहसास नहीं होता कि इसको भी बड़ा सोच के कहना चाहिए कि दिन पहले कहें या रात पहले कहें, सुनना पहले कहें या देखना पहले कहें. इसमें गैर शौरी सी बात होती है, जो जहन में आता है हम कह देते हैं. ठीक है, कुरान ने कई मकामात पर एक सीक्वेंस का, यानी चीज़ों की तरतीब दी है आयात के अंदर, और उनमें भी कुछ अजीब ऑब्जर्वेशंस हैं. अब उसका मुलाहिजा करें तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी खूबसूरत सामने आएंगी. ये बहुत आसान मिसाल है. इसमें अल्लाह ताला ने कहा है वَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, जब हमने अम्बिया से उनके मीथाक लिए, यानी उनसे पक्का वादा लिया. तो यहाँ पर कहा है وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. आपको नाम तो समझ में आ गए होंगे, किन अंबिया के नाम हैं, नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम. तो ये तारीखी तरतीब है, नहीं, सबसे कदीम इनमें से नूह, उसके बाद तारीखी एतबार से इब्राहिम, उसके बाद तारीखी एतबार से मूसा, और फिर आखिर में सबसे करीब रसूल के अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम. लेकिन इस तरतीब को तोड़ के अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह का जिक्र पहले किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ, और आपसे, आपकी तरफ, आपसे किसकी तरफ इशारा है, रसूल की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर बाकी तारीख के शुरू में ले गए बात को. तो बात आपसे शुरू की और फिर तारीख, अगर वाकई तारीखी तरतीब कब लिहाज करना होता तो मिनका कहाँ पर आता, आखिर में आता. तो होता وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَمِنْكَ. तो ये असल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला रुतबे का लिहाज किया गया है कि उनका जिक्र मुकद्दम किया गया है इन तमाम अम्बिया से पहले. और इसमें एक और हिकमत भी है, और कई हिकमतें, उसमें से एक हिकमत ये याद रख लें कि जो तमाम अंबिया है ना, उन तमाम के पैगाम का निचोड़ रसूल को दिया गया अलैहिस्सलाम. यानी अगर आपने इनको समझ लिया, रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने नूह को भी समझ लिया, इब्राहिम को भी समझ लिया, मूसा को भी समझ लिया, ईसा इब्ने मरियम को भी समझ लिया, उन चारों को समझ लिया. तो ये है एक उनका ख़ास रुतबा और ख़ास मकाम, जो सिर्फ मिनका की तरतीब से इस बात को सामने लाया गया है. इससे पहले इससे भी मज़ीद आसान मिसाल है, वमन युति अल्लाह व रसूल फ़ौलाइका मअल लदीना अनअम अल्लाह अलैहिम मिनन नबियीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन. बहुत मशहूर आयत है. इस आयत को सूरह फातिहा की सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम की तफसीर समझा जाता है. कुरान के कवायद में से एक उसका कायदा यह है कि कुरान अपनी बात खुद ही एक्सप्लेन करता है, अपनी बात खुद ही समझाता है. कोई बात इख्तिसार से कहीं एक जगह पे कह देंगे अल्लाह ताला, और बाद में किसी और जगह पर उसी बात को खोल देंगे. फातिहा में कहा था जिन पर इनाम किया, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो कौन है जिन पर इनाम किया, यहाँ वो बात वाज़ेह कर दी. तो यहाँ पर चार ग्रोहों का जिक्र है, नबीयीन, और ये उर्दू में भी अल्फाज हैं तो इनके तर्जुमे की भी ज़रूरत नहीं है, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन. सिद्दीक के मामले, सिद्दीक का लफ्ज़ जिसको सीगतुल मुबालगा कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सच को थामे रखने वाला, सिर्फ सच्चा ही नहीं, हर हाल में सच को पकड़े रखने वाला उसको सिद्दीक कहते हैं. जो सच्चा हो उसको सादिक कहते हैं, जो हमेशा सच्चा हो उसको सदीक कहते हैं,
उसको सच्चा दोस्त, सच्चे दोस्त को भी सदीक कहते हैं, लेकिन सिद्दीक कहते हैं, ये सीगतुल मुबालगा है, बहुत ही ज्यादा हर हाल में जो कुछ भी हो जाए सच को थामे रखे, सच का हाथ कदामन ना छोड़े, उसको सिद्दीक कहा जाता है। यहां पर आम सी आसान सी बात है कि यहां रुतबे की बात हो रही है, सबसे आला रुतबा नबीयीन का, उसके बाद उसके अगले दर्जे में सिद्दीकीन, जिन्होंने उनकी बात को सच माना, जो मुश्किल भी आए इस सच को नहीं छोड़ना, जो भी तकलीफ आए, जो भी लोग कहें, फैमिली जो भी कह दे, सोसाइटी दुश्मन हो जाए, हमने नबिया का साथ नहीं छोड़ना, उनकी वफा नहीं छोड़नी, वो सिद्दीकीन हुए। और उसके बाद जो लोग मारे गए अल्लाह ताला की राह में, शुहदा हुए, वो शुहदा, और फिर आखिर में वो सालिहीन, और तमाम अच्छे लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, जिन्होंने अपने आप को दुरुस्त किया, वो सालिहीन। लेकिन इसमें एक अजीब लतीफ़ बात यह भी है कि यहाँ पर कम से ज़्यादा की तरफ तरतीब जा रही है, सबसे कम तादाद इन चारों में से नबीयीन की है, और उससे थोड़ी ज़्यादा तादाद किसकी है, सिद्दीकीन की, और उससे ज़्यादा तादाद किन की है, शुहदा की, और सबसे ज़्यादा तादाद किन की है, सालिहीन की। और बड़ी खूबसूरत चीज़ यह है कि जो आखिर में कहा ना, वह हसुना उलाइका रफीका, और क्या खूबसूरत हैं ये लोग रफीक के नाते, कैसे ज़बरदस्त रफीक हैं ये, कितने खूबसूरत रफीक हैं। रफीक का लफ्ज़ अरबी में रिफ्क से आता है, रिफ्क, रिफ्क कहते हैं टेक लगाकर आराम करने को, नरमी टेक, अगर कोई बहुत ही आरामदेह सोफ़ा है तो उसको मिरफक कहा जाता है, मिरफका, मुर्तफक, ऐसी जगह जहां आप बैठें जहां मैट्रेस ज़रा बहुत ही सॉफ्ट हो और पीछे आप आराम से टेक लगा लो, ऐसा दोस्त जिसकी कंपनी में आप रिलैक्स हो जाओ। कुछ लोग होते हैं जो मेहमान होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है और आप ज़रा अपने आप को ज़रा संभाल के इंसान बन के रहते हो। कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हो, हंसी मजाक, इनफॉर्मेलिटी, वो कैसा दोस्त है, उसका उस दोस्त का क्या नाम है, रफीक, रफीक। अजीब बात है इस आयत में कि अल्लाह ताला ने जन्नत के वादों में से एक वादा ये किया है कि ये तमाम चार ग्रोह एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, रफीक, और हमें उनके साथ रफीक होने का मौका मिलेगा। समझ नहीं आती बात, क्योंकि हमें तो पता है अंबिया का हम कितना एहतराम करते हैं, कितना उनका रुतबा है, और अगर देखो हमारी तो तरबियत ऐसी है कि अगर अबू घर पे आ जाए तो सारे सीधे हो जाते हैं, टीचर क्लास में आ जाए तो सारे सीधे हो जाते हैं, दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे होंगे, कोई और आ जाए, यही बात होती है ना, एक फॉर्मेलिटी होती है, एक अदब का लिहाज होता है कि हम इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स ना हो जाएं। लेकिन जन्नत के तोहफों में से एक तोहफा ये भी है कि इन चारों की आपस में क्या होगी, रिफ्क, नरमी, आराम, आराम से आप रहोगे, आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, यू नो। वहसुना उलाइका रफीका, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से बनाए। और फिर उसमें एक बात ये भी कि कहाँ नबी का रुतबा, कहीं किसी सालिह का रुतबा, क्या कितना बड़ा फ़र्क है इन दोनों में। लेकिन अल्लाह ताला ने कितनी अपनी रहमत से इस मकाम को उस मकाम के साथ रफीक बनने का मौका दिया है, सुभानअल्लाह। चले अब आगे चलते हैं छोटी सी तरतीब के ऊपर, जो कुरान ने बार बार जिसका जिक्र किया है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और वह है सुनना और देखना। सुनने और देखने के बारे में कुरान ने बार बार सुनने को पहले कहा, देखने को बाद में कहा। अल्लाह ताला के नामों में से है अस्समी अल-बसीर, अस्समी अल-बसीर, तो अल्लाह कहते हैं वह अस्समी अल-बसीर, वह अस्समी अल-बसीर, वह अपने बारे में, वो सुनता है वो देखता है, वो सुनता है वो देखता है, वो सुनता है वो देखता है। फिर एक मकाम पर इंसान की खल्क के बारे में सूरतुल इंसान में ही कहा, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को बनाया सुनने वाला देखने वाला। अल्लाह खुद अस्समी अल-बसीर, इंसान को बनाया सुनने वाला देखने वाला। तो इस तरतीब में हमेशा किस चीज़ को पहले लाया जाता है, सुनने को। इसी तरह

इंसानियत तक पहुंचाने का है सुनाना, देखने का उसमें आंसर कम है, सुनने का ज्यादा है। कोई अगर देख ना सकता हो, हिदायत उस तक पहुंच सकती है फिर भी कि नहीं आसानी से? फिर भी पहुंच सकती है, क्योंकि हिदायत सुनाई गई है, हिदायत सुनाई जाती है, पहुंचाई जाती है, और देखना वो कम होता है, कमतर होता है। और फिर सुनने में अल्लाह ताला ने सुनने में एक बरकत डाली है कि जो बात को सुने वो उसको समझ सकता है फौरन। लेकिन अगर आप देखो, फर्ज करें आपने किसी रसूल की बात सुनी, आप किसी जमाने में रहते थे, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में रहते थे, और आपने नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो आपको एकदम उसका फायदा हो गया। लेकिन सुने बगैर अगर आपने सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम को गुजरते देखा तो उसकी क्या जमानत है कि आपको हिदायत मिली? कोई भी नहीं, क्योंकि देखने से वो असर नहीं हुआ जो सुनने से हुआ है, जो सुनने से हुआ है। तो सुनने को हमेशा मुकद्दम किया गया है देखने पर। और ये चीज फिर आगे अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में भी कही कि जब हमने उसे बनाया और उसका इम्तिहान दिया तो पहले उसको सुनने वाला बनाया और फिर देखने वाला बनाया। इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं कि हमें भी किस तरह बनाया। एक मैं ये क्लास पढ़ा रहा था, बहुत साल हो गए, ये नोट्स जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने सन 2004 या 5 में बनाए थे, 18-19 साल पहले। तो उस वक्त उसी साल मैंने फिर मिशिगन में ये कोर्स किया था, डिट्रॉइट में। तो डिट्रॉइट में सीरियंस बहुत हैं, शाम के डॉक्टर्स बहुत हैं वहाँ पे उस एरिया में। तो बहुत सारे डॉक्टर्स मेरी क्लास में थे, तो मैंने जब ये इस मिसाल के बारे में बात की, और फिर सीरियंस में, अरब में ख़ासकर अहल शाम में कुरान से मोहब्बत बहुत है, तो उनमें कुरान का इल्म भी बहुत है। मैं किसी आयत का हवाला दूँ, मेरी आयत मुकम्मल करने से पहले वो आयत मुकम्मल कर दें, लाइक अहलुल इल्म। तो बड़ी अच्छी उनके साथ सोहबत गुजरी। तो उन्होंने, उनमें से एक जो थे डॉक्टर, उन्होंने आके मुझे बताया कि देखें, हमने जहाँ तक हमारा इल्म है, जो बेबी बन रहा होता है माँ के पेट में, उसकी हियरिंग पहले डिवेलप होती है, फिर उसकी विजन बाद में डेवलप होती है। फजअलनाहु समीअन बसीरा, समीअन बसीरा। फिर इसमें एक और चीज़ ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमें जो सलाहियतें दी हैं उनमें किसकी कदर हमें ज़्यादा करनी चाहिए, यानी जिस चीज़ की कदर ज़्यादा होती है उसका जिक्र पहले होता है, क्या चीज़ नंबर वन है, क्या चीज़ नंबर टू है। तो हमारे बारे में भी अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह ताला ने हमें सुनने वाला और देखने वाला बनाया। इस तरह से समझ लें कि जिसका सुनना सही हो गया उसका देखना भी सही हो जाएगा। इस तरह भी समझ लें, किसी ने असल वाकई में बात सुन ली तो जिस तरीके से वो दुनिया को देखता है या जिस तरफ उसकी नज़र जाती है, जिस तरफ वो फोकस करता है, क्योंकि नज़र का ताल्लुक फोकस से है। आपकी नज़र किस चीज़ पर हो? नज़र का ताल्लुक गोल से भी है, आपके अहदाफ से भी है। आपको वो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, आपने उसकी तरफ जाना है। आपको ये टेबल नज़र आ रही है, आपने इसकी तरफ जाना है। नज़रों का ताल्लुक है कि आप अपने लिए कोई गोल मुअय्यन करते हो और उसकी तरफ जाते हो। सुनने से मुराद है पहले आप समझ तो लो गोल किस, कौन सा गोल लायक है कि उसके पीछे जाया जाए। यानी सुनने से आपका नज़रिया और आपकी बसर बदल जाएगी। फजअलनाहु समीअन बसीरा। अच्छा, अब इसकी इस्तिस्ना देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस जो कायदा है कि हमेशा कुरान में बार बार सुनना पहले और देखना बाद में, इसको दो मरतबा तोड़ा गया है कुरान में। इसके खिलाफ दो मरतबा मिसालें आई हैं। ये एक मिसाल है सूरतुल कहफ में, कुल अल्लाहु अअलमु बिमा लबिथु, कह दो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी देर रहे। किसकी बात हो रही है, कुछ पता है? अस्हाबुल कहफ की बात हो रही है। लहू गैबुस समावाती वल अर्द, वही तो मालिक है, उसी की तो मिल्कियत है गैब आसमानों का और ज़मीन का। अबसिर बिही व अस्मिअ, उसको उसलूब ताज्जुब कहते हैं अरबी में। कितना बेहतरीन वो देखता है, कितना बेहतरीन वो सुनता है, क्या ही वो देखता है, क्या ही वो सुनता है। मा लहुम मिन दूनिही मिन वली, उनका अल्लाह ताला के अलावा कोई वली नहीं है। वली मैंने कल समझा दिया था। वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, और उसके हुक्म में कोई शिरकत नहीं कर सकता। उसके हुक्म में फैसला करने में सिर्फ उसी का अमल दखल है, किसी और का नहीं।